चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है घट घट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा धर तब देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूं तुम मैं मृत दे तर सब हूं।

बैठा कौ सिमट पयो शंकर एकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप जंपव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संगरो दुष्ट जेती उठ बत उत पाता शकल मलेश करो रण काता जी अस्तु तब सरणी।

कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शकरता श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट।

0: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
1: Get lost।
0: पक्का नहीं मान रहा?
1: हाँ हाँ, नहीं मान रहा, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
0: राजा। ठीक,

वॉट इज अप, क्या बोल रहे सब लोग? एमवे बंटा है मालूम है ना, मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे. लेट्स डू इट.